0: आज का जवान जो है वो दीन को कैसे देखता है,
1: ज्यादा दिलचस्पी दीन की तरफ नहीं है।
0: दीन को हम बोरिंग बना के पेश करें और उसकी जिंदगी के अंदर उसका असर उसको दिखाई ना दे तो शायद वो जवान इतना नहीं आएगा।
1: दीन की खूबी यही है, दीन मकासिद को बहुत बुलंद कर।
0: तो इस्लाम आपको हर जगह फिर प्रैक्टिकल नजर आएगा,
1: उसके जहन में क्वेश्चन मार्क आ ही जाएगा।
0: बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, एक नए पॉडकास्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हमारे बीच एक ऐसे मेहमान हैं जो कश्मीर के जवानों में बहुत ज़्यादा पसंदीदा हैं। स्पिरिचुअलिटी, जवानों के चैलेंजेस, आज के जवान कैसे इस्लाम को अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इन तमाम टॉपिक्स को वो बहुत ही बखूबी कवर करते हैं और जवानों में बहुत उनकी मकबूलियत है। और मैं जो नॉन कश्मीरी हमारे व्यूअर्स हैं, मैं ये चाहता हूँ कि आप इनको सुने, इनको जाने। इंशाल्लाह कि आज का जब पॉडकास्ट आप सुनेंगे तो आपको थोड़ी आशनाई होगी और आप कोशिश करें कि इनको फॉलो करें। मैं बात कर रहा हूँ हमारे बुज़ुर्ग आलिम दीन आगा सैयद मोहम्मद हादी मूसवी साहब। बुज़ुर्ग आलिम दीन हैं, कश्मीर से हैं। आगा, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं।
2: मेरा सलाम सारे नाज़रीन की खिदमत में और आपका शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया यहाँ पर आने का।
0: जज़ाकल्लाह आगा जान। आगा, बिस्मिल्लाह करते हैं, आप अपना एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन अगर हमारे व्यूअर को दें आप।

0: जो जैसे वो जवान को बहला रहे हैं तरक्की के नाम पे, पढ़ाई लिखाई के नाम पे, मॉडर्निज्म के नाम पे, और जो ये तबका है ये अभी उसी कश्मकश में है कि मैं उनके साथ वो कांटेक्ट कैसे करूं, मैं कैसे वो अप्रोच उनका वैसा नहीं है। तो अब जहां पे भी कोई आलम दीन, कोई मुबल्लिग, कोई स्कॉलर दीन को उस तरीके से पेश करे तो जवान पीछे पीछे आते हैं। जैसे मैंने भी देखा, आप भी देख रहे हैं, बहुत सारे ऐसे मुबल्लिगीन हैं जो कामयाब हैं वो रिश्ता बनाने में जवानों के साथ। तो उनका एक ही, वो दीन को ऐसे पेश करते हैं जैसे वो जवान पसंद हो, और जवानों के जहन में सवाल आते हैं, उनको लगता है कि ये हमारे सवालों का जवाब देगा। और जवान, जैसे आपने अभी कहा, जवान दीन से बिछड़ा नहीं है, ना वो चाहता है मैं दीन से दूरी अख्तियार करूँ, ये मेरा काम है उसको कैसे लाऊं।
1: जी, बहुत खूबसूरती से आपने कहा। तो एक जो जवानों के अंदर ख़ुद एक जाज़बा है दीन के अंदर, जैसे दीन फितरी है, दीन अट्रैक्टिव है, लेकिन अगर वही अट्रैक्टिव दीन को हम बोरिंग बना के पेश करें, उसकी ज़िंदगी के अंदर उसका असर उसको दिखाई ना दे, तो शायद वो जवान इतना नहीं आएगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि दुनिया के इस वक्त के हालात ये हैं कि मटीरियलिज़म जैसे ही बढ़ती जाती है, वैसे ही हम देखते हैं कि मटीरियलिज़म की वजह से डिप्रेशन, एन्जाइटी, दूसरे प्रॉब्लम्स भी साथ में आते हैं, और जिसका हकीकी सल्यूशन जो है वो दीन के पास होता है।
0: बिल्कुल, इस पे कोई शक नहीं है
1: जी।
0: क्योंकि जैसे आपने भी कहा मटेरियल, तो जब जवान को इस जहनीत के इस पे तरबियत करें हम, तो उसका हदफ भी वही मैटर ही होगा
1: जी।
0: जो बहुत ही, जितना भी आप उसको ऊंचा ले जाएं फिर भी महदूद है
1: जी,
0: बहुत ही छोटा है निस्बतन उससे जो मेटाफिजिकल वर्ल्ड में जो हमसे कहा गया। तो मेरे ख्याल से ये जो डिप्रेशन, ये चीज़ें हैं, हर कोई अगर ज़िंदगी का मकसद छोटा हो और उसको ज़िंदगी भी वही उसी टाइप की फिर डालनी पड़ती है, उसमें न जाज़बियत है ना कुछ, वो छोटे से एक चीज़ पे अगर वो फेल हो जाए तो वो एकदम ज़िंदगी का खात्मा करता है या डिप्रेशन में चला जाता है। दीन की खूबी यही है, दीन मकासिद को बहुत बुलंद करता है कि इंसान जितनी भी कोशिश करे वो ऊपर ही चढ़ता जाता है। तो उसको अपनी ज़िंदगी का वैल्यू भी पता चलता है, और जिसके लिए वो ज़िंदगी गुजारता है, जिस मकसद को हासिल करने के लिए वो ये सरमाया गुजारी करता है, तो उसे लगता है इट वर्थ्स, मैं अगर ये अपनी ज़िंदगी जो है खर्च कर रहा हूँ एक बड़े मकसद के लिए तो इसकी कीमत मुझे मिलेगी। तो वो थकता कभी नहीं है, वो डिप्रेशन में नहीं जाएगा क्योंकि उसके पास उम्मीद ही है हमेशा। तो जो आजकल जो हो रहा है ये वही है, एक छोटी सी दुनिया, इसमें बस ये डॉक्टर, इंजीनियर, ये शायद वो पैसा, वो मकाम, और जब वो नहीं मिलता तो ख़त्म। लेकिन अब मुबल्लिग का है, ये मुबल्लिग की जिम्मेदारी है कि वो दीन को इस तरीके से, यानी मैं जो इसमें अगर मैं एक जुमले में कहूँ, मारिफत दीन की कमी है। अमल दीन पे हो रहा है लेकिन मारिफत के बगैर मज़ा उसमें नहीं है, लज्जत नहीं है, ड्यूटी है, एक कंपल्शन है। नहीं जी, आपको नमाज टाइम हो गया, आपको नमाज पढ़नी है, तो एक जवान सोचता है ठीक है यार अगर ना पढ़ूँ तो क्या होगा, मैंने उसको मारिफत ही नहीं दी है। मैं हदीसें बहुत ऊंची कहता हूँ, सलाह तो मेराजुल मोमिन वो, लेकिन वो अगर मुझसे सवाल करेगा तो मैंने कोई मेराज देखी नहीं, कैसी मेराज होगी। तो वो चूंकि माहौल ऐसा है, हमारे जवान पढ़े लिखे हैं, मुख्तलिफ मकतबाई फिक्र से उनकी आशनाई है, और हर एक मकतब फिक्र जो है वो उनको अपनी तरफ दावत दे रहा है, मेरे पास क्या है। तो वो एक चीज है, वो मारिफत की कमी है जिसपे मुझे लगता है हमें बहुत काम करना है।
1: सही। तो अगर एक जवान को हम अगर स्पिरिचुअल दुनिया की तरफ एक गाइड करना चाहते हैं, तो आज की प्रैक्टिकल दुनिया के अंदर जहाँ पर उनको जॉब भी करना है, करियर भी कर लेना है, पढ़ना भी है, स्टडीज़ भी है, या मैरिड है, हस्बैंड है, वाइफ है, तो ऐसे हालात में स्पिरिचुअल अगर वो अपनी ज़िंदगी जीना चाहता है तो हम दीन की तरफ से उसे क्या कहना चाहते हैं, व्हाट आर द स्टेप्स, पहला स्टेप क्या होगा उसके लिए?
0: पहला ये चीज़ है, हमें ये देखना है कि क्या दीन ने स्पिरिचुअल कुछ अलग बनाया है दुनिया से, कि नहीं आपको एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, उसमें जाने के लिए आपको दुनिया से टक्कर लेनी है ना। जैसे हम अपने अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की दास्तानें पढ़ती हैं, अहादीस में वारिद है, जैसे हम अइमे अथहार अलैहिस्सलाम की सीरत पढ़ते हैं, तो वो इसी दुनिया में यही ज़िंदगी गुजारते हैं, और उसी ज़िंदगी में वो स्पिरिचुअलिटी भी आती है। مسئلہ یہ ہے کہ کیا آپ اس دنیا اور اسپریچولیٹی کو دو الگ الگ چیزیں بنا کے پیش کر رہے ہیں؟ کہ آپ اسے کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں باوجود اس کے کہ آپ کام کر رہے ہیں، آپ پڑھ رہے ہیں، آپ اس دنیا میں ہیں، آپ میریڈ لائف میں ہیں، آپ پتہ نہیں کس کس میں، لیکن آپ کو اسپریچول ورلڈ میں جانا ہے، تو یہ دو چیزیں ہیں، تو شاید اس کو ایک چیز چھوڑنی پڑے گی، کبھی وہ اس پہ کمپرومائز کرے گا۔

0: दुनिया के अंदर कैसे एक जवान अपने आप को उस एरिया में अपने आप को संभाले,
1: ये कॉमन एक प्रॉब्लम है। एक जवाब वो ट्रेडिशनल है, नहीं जी आपको बचना है जी, नामहरम की नहीं करना है, वो आप नज़र नहीं उठा सकते, वो नहीं कर सकते, तो फिर एक जवान ये सोचेगा तो मुझे फिर पढ़ाई लिखाई काम का, जैसे मसलन अगर हम यहाँ का देखें तो कुछ नहीं करना है, घर पे बैठना है। तो दूसरी बात यह है कि जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि आया हम कामयाब हुए हैं दीन को एज अ सिस्टम

0: मुझे फिर पढ़ाई लिखाई काम का, जैसे मसलन अगर हम यहाँ का देखें तो कुछ नहीं करना है, घर पे बैठना है। तो दूसरी बात यह है कि जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि आया हम कामयाब हुए हैं दीन को एज अ सिस्टम
1: प्रेजेंट करने
0: प्रेजेंट
1: में।
0: करने में, कि हमारा एक दीनदार जवान कॉलेज भी जाए, यूनिवर्सिटी भी जाए, काम भी करे, जो भी हो, और जैसे जिस मुल्क में हो, जिस माहौल में हो, और वो अपना जो वो दीनी तशख्खुस है वो बहाल रखे। इसके लिए कहीं अगर हमारा ये दावा है कि हमारा दीन जो है वो लाए अमल है ज़िंदगी के लिए, तो उसके लिए तो नुस्खा होगा कि ये तो पता ही है, अल्लाह ताला को तो ये मालूम ही है कि ये मेरा बंदा जो मुसलमान है या जिसने मुझे माना है, कल उस मुसीबत में फंसेगा कि जहाँ पे वो बुरके वालियाँ नहीं होंगी या बुरके वालियों के लिए बुरके वाले नहीं होंगे, सब कुछ अयान होगा, औरियानियत आम होगी। तो क्या इसका दीन जो है वो दांव पे लगेगा? क्या इसका दीन इतना कमज़ोर होगा
1: कमजोर।
0: कि नहीं जी आपको नहीं निकलना? मेरे ख्याल से नहीं। एक तो यही है तकवा, एक तो यही सबसे बड़ा नुस्खा है। दूसरा ये कि हमें जो भी मुबल्लिग हैं, एक हम हमारा जो है माइंडसेट वो है कि हम जी बस मुसलमान हैं, और जो भी इस्लाम ने कहा है पर्दे के बारे में हर जगह वही पे होगा, तो वो उसी तरीके से हम बयान भी करते हैं। लेकिन वाकई हकीकत ये है कि नहीं है, ऐसा नहीं है। खुद मुसलमान भी आज पर्दे के इसमें कन्फ्यूजन में है कि कितना पर्दा है, क्या है। और जैसे वो दूसरी चीज़ें उनकी, तो जैसे आपने भी वो फरमाया कि इनकी इंसानियत है, इनको उरियान करो, कि इन्होंने एक एक करके जो है उरियान। अब हमारे पास दो ही रास्ते हैं, या तो हम बिल्कुल कट ऑफ होके बैठ जाएं कि नहीं जी बाहर तो उरियानियत है, बाहर नीमे उरियान है, वो है ये है, लड़के भी लड़कियां भी, तो हमें अपने आप को बचाने के लिए, या दूसरा ये है कि हमें ढूंढना पड़ेगा क्या करना है। क्या दीन हमें इन जहाँ पे इख्तलात हो ज़नो मर्द का, और मुख्तलिफ मज़ाहिब, मुख्तलिफ मकतबा है, फ़िक्र के लोग हों, शायद उज्जैन में बाज़ी लोग ऐसे भी हों जिनके लिए पर्दा करना कोई ये नहीं हो, ज़रूरी नहीं हो, तो हमारे बच्चे, हमारे जवान या हमारी बच्चियाँ क्या करेंगी? एक तो ये है कि हिजाब का कॉन्सेप्ट, हिजाब का फ़लसफ़ा, क्या हम सबको पता है मर्दों और औरतों को? क्योंकि यहाँ पे एक मसला है कि लड़के समझते हैं हमें पर्दा नहीं करना है, लड़कियों को पर्दा करना है। वो कॉन्सेप्ट ऑफ हिजाब क्या है?
1: एक्सप्लेन करिए ताकि हमारे व्यूवर्स के लिए क्लियर हो जाए जी, जवानों के
0: मैं एक
1: लिए।
0: दफ़ा इसी सवाल के इसमें था कि गुफ्तगू करते थे हम कौम में ऐसी इन्हीं बातों पे, तो फिर मैं समझ में नहीं आया, मैं कहा नहीं ये तो बाउंड्रीज ही है बिलाखिर एक जमात को अलग करने का। तो लेकिन हम इंडिया में रह रहे हैं तो इंडिया में तो बिल्कुल मखलूत निज़ाम है, तो वहाँ पे क्या करें? क्योंकि हमें घर आना था उस टाइम, हम बड़ा इस पे सोच रहे थे क्या करें, अब कैसे करें। फिर कोई जवाब नहीं मिला, मैंने भी किसी ने नहीं पूछा, तो मुझे भी जहन में कहीं। फिर बहुत सालों बाद आ गई है डॉक्टर असगदीपुर की, मैं सुनता आ रहा हूँ उस टाइम से, वो उन्होंने एक दफ़ा एक इस पर बात की, तो बात में एक कहा कि ये जो हिजाब दरअसल है, हिजाब कोई बंदिश नहीं है, हिजाब लाइसेंस है आपको बाहर निकलने।
1: बेशक
0: ये कैसे हो सकता है? कहते हैं कि नहीं जी आप हिजाब का कॉन्सेप्ट, उस पर दूसरी बात है, मसलन मैं यहाँ पे कैसे हिजाब करूँ और मसलन ईरान वाले कैसे हिजाब करते हैं वो दूसरी बात है, लेकिन हिजाब जो
1: कवरिंग
0: हाँ कवरिंग जो है, तो फिर उन्होंने उस पर बहस की कि ये कैसे, और औरतों का हिजाब कैसे बाउंड करता है मर्दों को, और मर्द क्या चाहते हैं कि ये औरत जो है। तो फिर मेरी समझ में आया कि नहीं, इस अगर एक सिस्टमेटिक हम लें तो बंदिश नहीं है, यानी हमें हमारे जवानों को नहीं कहा गया कि आप ना जाएं, लेकिन एक चीज़ समझाई गई है कि ये कोई वो बाज़ार में बेचने वाली चीज़ें नहीं है। कुछ चीज़ें हैं ना जो हमारे जहन को ग़िज़ा मिले, हमारा जहन जो है उस तरह आशना हो कि मैं इस लड़की को या ये लड़की इस लड़के को किस अंदाज़ से देख रहे हैं। एक वो है, जैसे हम महरम व नामहरम बात करते हैं, हर बात करनी गुनाह तो नहीं है, लज्जत भरी बात करनी, लेकिन मैं जब उसको वैसे ही टूल जैसा वो अपनी लज्जत का, वो मेरे ख्याल से एक चीज़ ये है कि हिजाब का कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि हिजाब अगर हमारी बच्चियाँ करती हैं तो उनके लिए कोई बाउंड्री नहीं है, ये कोई हिजाब उनकी बाउंड्री नहीं, हिजाब जो है कि वो एक निसफ आबादी को बर्बाद होने से बचाती है।
1: बेशक
0: क्योंकि जो एक शहवानी गलबा है तो वो उसको बचाती है अपने हिजाब से, और दूसरी चीज़ हिजाब उसे बाहर ले आता है, और लड़के को भी हिजाब परमिशन देता है आप अपोजिट जिन्स में काम करें, तो ये कोई बंदिश
1: सही, अगर क्योंकि घर पे रहेगी औरत तो उसको हिजाब की जरूरत ही नहीं, अगर महरम ही है,
0: बिल्कुल
1: हिजाब है ही इसलिए ताकि वो बाहर जाए और बाहर जाके उस दुनिया में जिंदगी बसर करे।
0: मैंने एक दफा ये कहा था मुझे

0: बड़ी वो इस पर
1: तनकीद हुई
0: कहा कि घर में क्यों क्यों क्यों नहीं हिजाब, मैं महरम मेरी बेटी है वो, मैं क्या उसको मेरे सामने हिजाब करने से क्या होगा। हिजाब का कॉन्सेप्ट है कि ये लड़की बाहर जाए, बाहर काम करे, कॉलेज जाए, यूनिवर्सिटी जाए, ऑफिस जाए, और इसको कोई रोके ना। हाँ, एक मर्ज जो मर्द के दिल में है वो अल्लाह ताला को पता है, वो उस मर्ज को, वो मर्ज ज्यादा ना बढ़े, वो बीमारी वो वबाई ना बने, तो इसको ये कवर कर दिया जाता है कि आप इसको ताज़ीम की निगाह से। और दूसरी तरीके से भी, जैसे आजकल की, अब इस पे जो मुतखस्सिसीन हो वो बहस कर सकते हैं, कहते हैं कि दिल में पर्दा होना चाहिए, जी आप बस क्यों ऐसे देखते हैं, अगर कोई नीम उरियान लड़की हो या कोई ऐसे वियर्ड लिबास में लड़का हो तो आपको क्यों बस इतना ही समझ में आता है कि एक वो सेक्सुअल अट्रैक्शन है। लेकिन एक चीज़ है, फितरती इंसान जो है, अभी हमने वेस्टर्न वर्ल्ड का ये नुस्खा भी देखा कि नहीं जी आप इसको बंदिश कहते हो, छोड़ दो लड़की जैसे चाहे, अपना जिस्म है, अपनी आज़ादी है, वो है। और हमने देखा कि हम अभी अब हर जगह हम इखलाक पे ढूंढ रहे हैं, अब क्या करें, कैसे फंसे, क्योंकि अब तो जिसे हम जायज़ और नाजायज़ कहते हैं अब वो हम भूल ही गए, पता ही नहीं जायज़ कौन है नाजायज़ कौन है। तो बहरहाल एक जो हमें नया नज़रिया आया था इस हवाले से, नहीं जी आपने इनको रोक के रखा है, इनको मखलूत करें, कोई नहीं, एक इंसान है, आपस में बैठे उठे बैठे, कोई नहीं, अब ये ना देखें इसने क्या पहना है आप। लेकिन ये चीज़ें हैं जो अभी सामने आ रही हैं थर्ड वर्ल्ड में, अभी फर्स्ट वर्ल्ड में पहले ही।
2: ये मैं दोस्तों से हमेशा कहता हूँ कि ये जो इनका मॉडल है वेस्टर्न मॉडल के, भाई लड़कियाँ जो चाहे पहने और मर्द अपनी निगाहें नीची कर लें, ये वेस्ट में तो इन्होंने इम्प्लीमेंट किया, तो क्या ये सक्सेसफुल था
0: ना?
2: क्या वेस्ट में औरतें बग़ैर लिबास के आती हैं तो क्या उनके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट नहीं होता, रेप नहीं होता? यानी अगर इनके स्टैटिस्टिक्स देखेंगे तो एक बहुत चौंकाने वाला स्टैटिस्टिक मैंने एक बार पढ़ रहा था, 97% यूके में बिटवीन 16 और 24 ईयर्स की लड़कियां कहती हैं कि हमारी ज़िंदगी में कम से कम एक बार हम लोगों को सेक्सुअली हरेस किया गया, 97%। तो यानी आपने जब कहा कि भाई हमारे यहाँ मॉडल तो परफेक्ट है और बस लड़कियां जो भी पहनेंगी, लड़के हुआ तो नहीं,
0: नहीं हुआ।
2: वो जो आपने कहा एग्जैक्टली जो खुदा ने कहा है कि मरज है इंसान के दिल में, वो तो बाकी रहता है, वो तो ख़त्म नहीं होता। बस अगर बस इस मॉडल में जहां पर एक लड़की काम पे, ये लड़की कॉलेज आ रही है, लड़का भी कॉलेज जा रहा है, और वो उसको पता हो उसकी बाउंड्रीज, यानी हिजाब, यानी वो बाउंड्रीज उसको पता हो कि भाई एक लड़की से मैं बात कर सकता हूँ, कितनी बात कर सकता
0: हूँ, किस हद तक बात कर,
2: जी
0: बिल्कुल,
2: यानी उसकी बाउंड्री है कि भाई आप काम से रिलेटेड बात कर सकते हैं, पर्सनल बात नहीं कर सकते, है ना। पर्सनल अगर बात कर रहे हो, तुझे क्या पसंद है, मुझे क्या पसंद है, उससे इंसान के अंदर अट्रैक्शन पैदा होता है। इस्लाम कहता है नहीं, यहाँ पर आपको जो है आप कलीग्स बन सकते हैं, फ्रेंड्स नहीं बन सकते,
0: फ्रेंड्स नहीं बन सकते।
2: तो ये इस्लाम एक बाउंड्री देता है, और उसका जैसे आपने कहा वो वैक्सीनेशन है,
0: बिल्कुल
2: बिल्कुल, यानी कि वो एक आपको वैक्सीनेट करता है कि भाई, क्योंकि अगर आप फर्स्ट स्टेप लोगे तो आप सेकंड स्टेप पे नहीं रुक सकते,
0: बिल्कुल
2: नहीं। आपको पहले स्टेप पे ही रुकना है ताकि आप जो है अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें।
0: हाँ, ज़िमन में आपसे ये एक चीज़ का मैं एतराफ़ करूँ, बहसियत मैं भी एक मुबल्लिग हूँ, गर्चे की इतनी हैसियत नहीं है मुझे अपने मुबल्लिग कहने की, लेकिन हमारे दीन में जो एक रविश कुरान की है कि अगर वो कोई नज़रिया देता है फिर उसका रोल मॉडल पेश करता है, ये है औरतों में, जैसे मरियम अलैहिस्सलाम, आसिया अलैहिस्सलाम, वैसे ही हम हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलाम। कॉन्ट्रडिक्शन है, एक वो जो किताबों में हज़रत ज़हरा सलाम के हैं, जो एक बहुत ही फ़ाल एलिमेंट अपनी सोसाइटी की, जंग में भी हुज़ूर के साथ, और पैरामेडिकल स्टाफ अपने इसके तहत, और बहुत बड़े पॉलिटिकल सोशल डिस्कशंस में, डिबेट्स में हिस्सा लेना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बात करना, बहुत सारे मसाइलों पे बहस गुफ्तगू करना, ये एक फ़ातिमा ज़हरा, जिसका नतीजा फिर खुतबा फदक हुई थी, एक फ़ातिमा ज़हरा सलाम जो हमने पेश की, जो घर के पिछले कोने में नमाज़ पढ़ती है, जो कभी बाहर नहीं निकलती। तो जब अब हमारी बच्चियाँ हैं, जैसे फितरतन मैंने कहा मुसलमान हैं, फितरतन दीन की तरफ रागिब हैं, अब वो चाहती हैं हम भी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा की तरह बने। तो एक किताबें तो वो पढ़ती नहीं, उनके पास पता ही नहीं किताबों में क्या लिखा है। अब जो मैंने मिंबर पे कहा कि नहीं जी वो बड़ी चादर और वो किसी से बात नहीं करती थी, तो वो انو انالائز کرتی ہیں کہ ٹھیک ہے اگر یہ فاطمہ سے ٹھیک ہے یہ مقدس شخصیت ہے, اس کا احترام واجب ہے, سب کچھ ٹھیک, اور اس کی شفاعت کے لیے ہمیں بہت محنت کرنی

0: पड़ेगी, लेकिन मेरे कॉलेज में, मेरे दफ्तर में, मेरे स्टी में, मेरे फ्रेंड सर्कल में फातिमा जहरा का कहीं कोई दखल नहीं हो सकता, कोई रोल मॉडल मेरे लिए बन नहीं सकती, क्योंकि ये घर में बैठी थी, ये कुछ घर में काम करती थी और कुछ नहीं करती थी। तो अब इसको क्या दें हम, यानी एक एक शख्सियत है तारीख में जो मुजस्समे इस्लाम है, अगर हम औरतों के अहकाम की बात करें, और मुजस्सम जो है वो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह की शख्सियत है। यहाँ मेरी बेटी चाहती है कि मैं भी इस मॉडर्न एरा में एक दीनदार औरत की तरह रहूं, लेकिन उसके लिए कोई रोल मॉडल नहीं। अब एक थी, मैंने उसको ऐसे पेश किया कि वो कहती नहीं बाबा, ये आज के ज़माने की नहीं हो सकती। अब ठीक है, ये हमारी एक मुकद्दस शख्सियत है, इसके शहादत पे, इसकी विलादत पे हम अपना वो खराज अकीदत पेश करें और इसके गम में रोए ताकि हमें कल शफात करेगी। दुनिया में कहाँ है, ज़िंदगी में कहाँ कहीं है,
1: यानी रोल मॉडलिंग हज़रत फ़ातिमतुज़्ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा कि हम लोग नहीं कर नहीं पाए, यानी नहीं प्रेजेंट कर पाए।
0: हमारे अइमे अथहार, खुद अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी, बहसत एक खानदार, बहसत एक वो अनसर जो, यानी वाकअन अगर अली अलैहिस्सलाम सोसाइटी में ना हो तो एक बहुत बड़ा खिलाफ पैदा हो जाता है। तो शायद बहसत मुबल्लिग मुझे अपने जवानों को ये कहना नहीं आया कि वो अट्रैक्ट होते इनकी ज़िंदगियों की तरफ, पढ़ते बहुत सारे हैं, मैं नहीं कहूँगा टोटली हम इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम जनरल में देखें, नहीं हम जो भी मुबल्लिग जिस सतह का भी हो वो इस तरीके से, क्योंकि उसे ये बहुत बड़ा चैलेंज है जो आजकल हो रहा है, हमारा सोशल जो फैब्रिक बन रहा है वो बहुत बड़ा चैलेंज है, और हमें इस तरीके से हम फ़कत शहादतों और विलादतों से उसका कोई जवाब नहीं दे सकते जब तक कि हमारे मेंबरों में ये चीज़ें बयान ना हो। बहुत सारे हैं जो ये कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनको इससे इसकी जजा दे और तौफीक दे। तो लेकिन कुल्ली जब हम देखें, अगर हम 1000 मुबल्लिग ले लें तो 100 बंदा ये काम कर रहा है, 900 बंदा नहीं कर रहा है। तो ये एक वो ना वो बिल्कुल तजाद सा हमारे जहनों में पैदा होता है। तो अगर हम इस तरीके से, जैसे हम इस्लाम को एज ए सिस्टम पेश करें और इस सिस्टम के बहुत जो है उसवा हसना है उनको पेश करें, तो मेरे ख्याल से बहुत सारे जो है वो गुत्थियाँ सुल जाएंगी खुद ब खुद, वो गिरे खुल जाएंगे।
1: नहीं, अहले बैत को एज ए रोल मॉडल पेश करें इंडिविजुअल लाइफ में, सोशल लाइफ में, पॉलिटिकल लाइफ में, इकोनॉमिकल लाइफ में, तो इस्लाम आपको हर जगह फिर प्रैक्टिकल नज़र आएगा।
0: यही मैं एक नुक्ता बस ये अर्ज़ करूँ इस मसले में कि जब हम किसी को खुतबे फदक सुनाते हैं, अब जिसके जहन में वो फातिमा ज़हरा हो जो कभी बाहर नहीं निकलती, तो वो उसके जहन में क्वेश्चन मार्क आ ही जाएगा, कहीं अपना तो नहीं बनाया इन्होंने। अरे जो बाहर ही नहीं निकली, उसके उसको क्या पता पोलिटिकल सोशल सिचुएशन क्या थी, किस हालत।
1: यहीं पर जवान अगर आके ये सवाल करें, कहें कि मतलब वो हदीस है कि रसूल अल्लाह के घर में एक नाबीना शख्स आता है, तो बीबी कहती हैं कि मसलन ये नाबीना है, मैं तो नाबीना नहीं हूँ ना, तो बीबी को ये भी गवारा नहीं था, ये कॉन्सेप्ट पेश किया गया, इसके बारे में क्या कहेंगे?
0: इन्हीं चीज़ों को ये उलमा का काम है
1: जी,
0: ये किस कॉन्टेक्स्ट में बात की गई है, क्या था मसला वहाँ पे, क्या मैसेज देना चाहती थी हज़रत ज़हरा, या ये थी कि एक नाबीना है मुझे उसको नहीं देखना, या ये कि नहीं मसलन मैं एक स्पेस चाहती हूँ अलग अलग, आप घर में किसी को भी लाए मुझे नहीं है, लेकिन औरत एक अलग चीज़ है,
1: मर्द
0: एक अलग चीज़ है,
1: दोनों का बैठने की,
0: दोनों की बैठने की अलग जगह हो, तरीका बात करने का हो, मुख्तलिफ तरीके से जो उलमाओं का अपना हमारा वसी खजाना है हमारे पास।
1: लेकिन हमारी हिस्ट्री में ये बिल्कुल वाज़े है कि हज़रत फ़ातिमतुज़्ज़हरा हत्ता मौला अली के असहाब थे, उनके साथ वो बैठ वो मसलन वो बैठती थी और बीबी जो है वहाँ पर गुफ्तगू भी करती थी, मशवरा भी करती थी, मशवरा देती भी थी। तो ये हमारे तारीख में है, यानी क्योंकि शायद बहुत सारे व्यूअर्स हमारे देख रहे होंगे इस वक्त सोच रहे होंगे कि ये कैसे बोल रहे हैं मौलाना लोग, हमने तो कभी ये सुना ही नहीं, लेकिन हमारे पास तारीख में हिस्टोरिकल इसका रेफरेंस है। तो हम आते हैं हमारे उसी टॉपिक के ऊपर कि अगर आज जो एक जवान है उसका, जैसे हमने कहा कि तकवा और हज़रत हम लोग अहले बैत को रोल मॉडल बनाएं और वो तकवे का सही स्टैंडर्ड वही है
0: वही
1: कि
0: है।
1: आप सोसाइटी में एक्टिव रहें और आपके अंदर जो एक इनर सेंस जो आपका वैक्सीनेशन है वो इतना स्ट्रांग हो कि बाहर के वायरस से वो लड़ सकें। यहीं पर आज जो है महरम ना महरम की हमारी बात चल रही थी रिलेशन, तो हम आके सोशल मीडिया पे जो फहशा अवेलेबल है उससे जवान को क्या कहेंगे कि कैसे बच सकता है वो?
0: मैं इस पे

0: कभी सोचता था कि एक इसका रास्ता ये है कि बंद कर दें, नहीं जी ना मोबाइल आप उठाएं ना सोशल मीडिया यूज़ करें, लेकिन सोशल मीडिया का एक ही एस्पेक्ट तो है नहीं, कहीं ना कहीं दूसरी चीज़ें भी हैं।
1: ये भी हम लोग सोशल मीडिया पे डालने वाले हैं।
0: सही, तो बंद नहीं कर सकते
1: जी।
0: फिर ऑल्टरनेट क्या है, आप इसी टेक्नोलॉजी को पॉजिटिवली कैसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे अभी आपका जो मीडिया चल रहा है, ठीक है, ये भी वही सोशल मीडिया है, जहाँ पे मुझे एक कंटेंट मिलता है फाशा का, वहीं पे एक कंटेंट मिलता है जो मेरे रूह को, मेरी फितरत को झंझोड़ देता है, गजा देता है, मेरे दिमाग को सवालों से भर जाता है, जो भर देता है, फिर मैं उस सवालों के जवाब भी ढूंढता हूँ, जो मेरी असली इनर जो फितरत की जो है ना वो तड़प है, प्यास है। अब जब है ही नहीं कुछ, है ही नहीं, मेरे पास एक वसीला है उस पे कोई ठीक चीज़ है ही नहीं, तो मैं कहाँ जाऊँगा। उसके लिए प्रोपेगेंडा भी है, प्रोपेगेंडा मशीनरी भी है, एडवर्टाइजमेंट भी है, और मुझे ये भी कहा जाता है अगर आप इसको इस्तेमाल ना करें तो आप पता नहीं ज़माने हजर के इंसानों में हो, ये यूज़ करना है, और ये अभी इंटीग्रल पार्ट बन गया है हर एक चीज़ के लिए। आप बजाय कि मैं इसको बंद कर दूँ या डिनाई कर दूँ, नहीं जी ये बिल्कुल जहन में नहीं, ये बिल्कुल नहीं हो सकता, इससे है कि आप मैदान में आ जाएं, मैदान अमल में आ जाएं, आपके पास तो कंटेंट है, आप वो डालें। खुदा और शैतान की जंग जो चलती है मेरे अंदर है ना, बकौल डॉक्टर अली शरीयती, वजूद इंसान जो है वो मैदान जंग है, जंग तो अल्लाह तो और शैतान के बीच में। तो अब मैं बहसित इंसान, मेरे पास दोनों चीज़ें हैं, दोनों चीज़ों की मारिफत भी फितरत में, अब मुझे क्या करना है। मेरे पास तो एक चीज़ है कि मैं अच्छे खासे कंटेंट देखूं, या मैं ऐसे कंटेंट ही क्रिएट करूं जैसे आजकल हो रहा है,
1: जवान कर रहे हैं।
0: एक तो ये है कि नहीं जी बंद, मेरे ख्याल से वो हो नहीं सकता। एक दफ़ा जब टेलीविज़न आए थे तो वो कह रहे थे नहीं जी इनको नहीं देखना है, नहीं हो नहीं सका ना हो सकता है, तो ये टेलीविज़न इतना बड़ा था, चेंज
1: की सही यूज़ करें।
0: एग्जैक्टली वही है, सही यूज़। इल्म डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है लेकिन कंस्ट्रक्टिव भी है। क्या इल्म दीन डिस्ट्रक्टिव नहीं हो सकता?
1: हो सकता,
0: तो पढ़ना छोड़ दें क्या? हाँ, इसमें यूज़ अच्छे तरीके से करें। तो अब हमारे जवानों के सामने जहाँ पे पोर्नोग्राफी है, जहाँ पे उरियानियत है, तो आप अच्छा कंटेंट, जब आपने कंटेंट क्रिएट किया उसके बाद आप सवाल करें अब क्या करना है। फिलहाल तो कहीं मैदान में है ही नहीं। अब हम अभी कहेंगे अपने जवानों को, ठीक है सोशल मीडिया आपको गलत कंटेंट देता हूँ आप ना देखें, ये तो कहेंगे वो, कहेंगे ये पागल हो गया है, पता नहीं किस ज़माने से आया, इसको पता ही नहीं क्या है। तो क्योंकि इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मेरे ख्याल से उलमा का काम है, किसी भी मज़हब के हो, किसी भी दीन के हो, उनको मैदान अमल में आके वो कंटेंट क्रिएट करना है या उस कंटेंट की प्रोपगेशन करनी है जो अच्छा खासा हो। फिर आप उस जवान की जिसकी आपने तरबियत की उसके सामने दो चीज़ें होंगी, अब ये यहाँ जाए या यहाँ जाए।
1: इस ये भी कंटेंट, इस्लामिक कंटेंट या हलाल कंटेंट भी इतना क्रिएटिव और अट्रैक्टिव होना चाहिए,
0: वो तो चाहिए
1: कि वो
0: आपको मुकाबला करना है। मुकाबला बिल्कुल, मुकाबला बिल्कुल
1: जी।
0: वो नहीं हो सकता कि ये 26 की कोई एनिमेशन बना रहा हो और अब तो 1970 की कोई रील बना रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। आपको बिल्कुल इस पे आना चाहिए, और इसमें भी हम ना उम्मीद नहीं है, हमारे जवान हैं इस फील्ड में। हाँ, उनको डायरेक्शन की ज़रूरत है। हाँ, भरमार कॉन्टैक्ट क्रिएट कर सकते हैं, आपके पास हैं, लेकिन जब सिस्टमेटिक आप नहीं सोचेंगे तो आपको इन्हीं सवालों का जवाब देना पड़ेगा, आखिर में आप नहीं दे सकते, नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं कर सकते।
1: सही, तो यहाँ पर हम आते हैं दोबारा, जो आज हमारी सोसाइटी में एक बड़ा प्रॉब्लम है शादी का, मैरिज का, क्योंकि जवान जो हैं बहुत सारे जो हैं वो खुसूसन कश्मीर में जो स्टैटिस्टिक्स आए हैं वो उसमें ये बताया जा रहा है कि कश्मीर में शादियां बहुत लेट हो रही हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि शादियां लेट हो रही हैं कश्मीर में। इसके बारे में आप क्या देखते हैं, क्या सोल्यूशन देखते हैं, जवानों को किस तरीके से हम गाइड कर सकते हैं?
0: मैं फिर वही पाऊँगा, हमारी बड़ी प्रॉब्लम यह है कि अगर दीन बहसत दीन, जब हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ के इस दीन में दाखिल होते हैं, एक एक चीज़ की हमें मारिफत होनी चाहिए। जब हम शादी की बात करते हैं तो हर जगह जब आप निकाह पढ़ते हैं, शादी के बारे में बात करें तो एक हदीस जो है वो हमारी बिल्कुल टिप ऑफ द टंग है, अन्निकाह सुन्नती, ठीक है, फमन रगिबान सुन्नती फलाई समीनी, यानी ओन करने से رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے تناظر میں اون کرنے سے کتراتے ہیں، نہیں جی آپ ہم مجھ میں سے نہیں ہو۔

0: सलमान की तो बात ही नहीं है, ठीक है। अब ये इतना इम्पोर्टेंट मसला है तो फिर है क्या, है किस लिए? आदमी तो आज़ाद है बेचारा, खुला है, क्यों बनना है इसको किसी चीज़ से? और क्यों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पे इतनी ताकीद करते हैं? यार इतनी हदीसें जो हमारी शादी पे है, फिलासफी ऑफ मैरिज क्या है इस्लाम में? ये वाकई इंसानी फिलासफी है या कोई दीनी अपनी मनगढ़ंत है? तो दूसरा ये है कि जब हम शादीशुदा लोगों को देखते हैं, उनमें अक्सर कॉम्प्रोमाइज लाइफ गुजार रहे हैं। अरे अगर ना करते तो ठीक ही था, वो की क्यों? अबे क्या फंस गए यार, बाप ने कहा, ऐसी सी बातें हो रही और सबसे लितस्कुनु इलैहा, सुकून ही नहीं है। तो अभी जब आप शादी कर रहे हैं तो हर कोई कहता है मैं अपना कैरियर पहले बनाऊंगा। कैरियर कब बनेगा? 50 साल बाद, 40 साल बाद? कैरियर ठीक है, ये अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है, आपका कैरियर भी बनना चाहिए। क्या शादी माने हैं आपके कैरियर बनने से? हाँ जी, अब कौन दूसरी की जिम्मेदारी उठाएगा, वो ये? अच्छा, जो आप शादी से हासिल करना चाहते हैं क्या वो आपको बाज़ार में अवेलेबल है? है, अगर है तो फोकस करें कैरियर पे, ये तो बाज़ार में भी मिलेगा ना। आपने फिलॉसफी ऑफ मैरिज क्या कहा? यानी एक स्टूडेंट, जब वो स्टूडेंट हो, शादी करेगा, ये शादी उसकी तहसील इल्म में रुकावट बनेगी या इसको ओज तक ले जाएगी? इस पर बात ही नहीं होती। नतीजतन ये है कि आदमी अपने आप को बचता रहता है, अरे अब बीवी आएगी, फिर बच्चे होंगे, फिर ये जिम्मेदारी, फिर वो, बेहतर है इससे बचे, ठीक है।
1: दूसरी तरफ से वाजे भी है कि गुनाहों की तरफ अट्रैक्शन भी है, क्योंकि ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहाँ गुनाहों की तरफ अट्रैक्शन है। अल्लाह ने एक हलाल रास्ता भी बताया है, हलाल रास्ते को आसान भी बनाया है। अब यहाँ पर जो है वो जवान के लिए चूज़ करना है, हलाल तरीका या हराम तरीका, क्योंकि ख्वाहिश तो है, ख्वाहिश को तो रिजेक्ट नहीं कर सकता।
0: नहीं, बिल्कुल कभी नहीं, इस्लाम ने तो कभी इसको डिनाई नहीं किया ना, इसको एक रास्ता दिया है। लेकिन क्लियर ये हो जाए कि असलन शादी का कॉन्सेप्ट है क्या, ठीक है। अब जो दूसरा फोर्स जो उसे अपनी तरफ ले जाता, वो किस लिए? वही गुनाह, एक चीज़ ही है जिसके लिए घर में क्यों नहीं मिलेगा वो उसे? उसने शादी की है, उसने ढूंढी है एक लड़की, लड़की ने एक लड़का ढूंढा है, तो ये बाज़ार में क्यों झांके, ये बाहर जाके क्यों झांके, घर में क्यों ना झांके? हम बहुत इस पे पढ़ते हैं हुकूक ज़न व मर्द। मुझे एक बहुत सारे फिजूल टॉपिकों में से एक फिजूल टॉपिक ये लगता है ना, इनकी इसका ये अपनी अहमियत अपनी जगह, लेकिन जहाँ पर ये पढ़ा जाता है वहाँ पर इसको पढ़ा ना जाए तो बेहतर है। हम शादियों में ये पढ़ते हैं, यानी पहले ही कहते हैं लड़की को कि शौहर तुम्हारा वो नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। शौहर कहते हैं बेटी ये जो लड़की है ये तुम्हारे लिए खाना नहीं पकाएगी, तो एक तरीके का वो अजीब सा, बजाय इसके मोहब्बत सामने आ जाए, इश्क, वो इश्क की वो आग जो बढ़ के, हम इनको एक वो बेस कैंप पे लेके ना, वो अपना हुकूक है ये, क्योंकि आजकल हुकूक की पामाली हो रही है इसीलिए हो रहा है। मेरे ख्याल से इसको ये सिखाएं कि जब बीवी जो है, जब ये बंदा बाहर चाहे स्टडी कर रहा हो, चाहे पढ़ाई कर रहा हो, चाहे आपको कैसे मेकअप करके सजना है, इसने बहुत बाहर देखा है, वो सब भूल के ये आपको ही देखे। लड़का आमतौर पे, हमारे यहाँ एक कहावत है, कहावत क्या है, एक रूटीन चल रही है कि शादी से पहले लड़का बड़ा बनता संवरता है, कॉलेज जाता है, और फिर जब शादी करते फिर कहते हैं यार ये दाढ़ी क्यों नहीं बना, भाई छोड़ो मेरी ज़िंदगी तो ख़त्म हो गई। ये उसकी इनर वो होती है ना, अब क्या क्यों आप 10 देख रहे थे, अब एक को ही देखना है ना, उसमें भी है, उसको भी कहा जाए। हदीसें हैं हमारे पास, बन सवर के जब तुम अपनी बीवी के सामने आ जाओगे तो कैसा, वो चीज़ें जिससे इश्क की आग जो है ना वो उनमें भड़क उठे, बजाय इसके वो चीज़ें उनमें बने कि उनको लगे कि जी ये मेरा मुलाजिम है,
1: बर्डन नहीं लगे,
0: बर्डन ना लगे,
1: बल्कि उसको शौक और इश्तियाक और वो हो।
0: मेरे पास सैकड़ों चॉइस थी, मैं मेरे पास 10 लड़कियां थी जिन्हें मैं चूज़ कर सकता, मैंने एक को चूज़ किया, यानी ये 100, ये एक, ये इसके बराबर है, ठीक है। अब मैं क्यों जाऊँ बाहर देखूँ? कहीं ना कहीं अंदर गड़बड़ है। वो अपना वो ना वो। और दूसरा ये, अगर हम लेट मैरिज करते हैं, इसके फवायद और नुकसान क्या हैं? एक ही नहीं है, बहुत सारे। अल्लाह ने क्यों कहा है कि पहले मैरिज करो? और हर एक जगह पे लअल्लकुम लअल्लकुम लअल्लकुम, नमाज पढ़ो लअल्लकुम तुफ्लिहून, वो अमल करो लअल्लकुम तुफ्लिहून, ये लअल्लकुम इसमें शक है। लेकिन फकत शादी पे अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी माली हालत की वजह से तुम्हारी शादी नहीं है, यही रुकावट बनती है, तो छोड़ो मुझ पे, میں کروں گا تمہیں غنی, وہاں پہ اللہ کم نہیں ہے. تو کوئی چیز ہے, سب سے بڑی چیز یہ ہے.

0: कि मैं पहले अकेला था, मुझ पे कोई जिम्मेदारी नहीं थी, अब मेरे पास बीवी आ गई मुझ पे, तो मैं ढूंढने लगा हूँ रिज्क को. ये एक शायद ये एक चीज़ भी हो. ये तो हो गई, लेकिन वो अट्रैक्शन, वो जो ख़त्म होती है, वो ख़त्म नहीं होनी चाहिए. जैसे हमने सीरे पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पढ़ा कि जब भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खदीजा को याद करते थे, जब भी वो रोते थे
1: शादी के
0: बहुत सालों बाद रोते थे.
1: खुद मौला अली अलैहि सलाम के लिए जंग सिफीन में इन्हें 25 साल के बाद मौला अली रो रहे थे हज़रत फातिमा ज़हरा के लिए.
0: अगर यही जिंदगी ना, वो अपने तरीके, एक वो मुकद्दस जिंदगी ना, जो फोके बशर है, नहीं हम वो नहीं कर सकते, ठीक है. मुझे लगता है कि मियाँ बीवी में वो अट्रैक्शन नहीं है, और जिन्होंने शादी नहीं की, जब वो इनका हाल देख रहे हैं, वो कह रहे हैं नहीं छोड़ो बस, अब देखते हैं. क्योंकि एक एक जिंदगी का एक पड़ाव आता है जब किसी की ज़रूरत पड़ती है. वो इसलिए नहीं कि मुझे कुछ करना है, ज़रूरत है, अब मेरी नस्ल भी चले, मैं भी अब बूढ़ा हो रहा हूँ, वो भी अब बूढ़ी हो रही है, कोई साथी मिलना चाहिए, फिर चलो शादी के बंधन में बंधे. तो मेरे घर में, हमारे यहाँ अदालत शरिया चलती है, मैंने सबसे कम तलाक जो पड़ी वो 1 हफ्ते की है. एक थर्सडे को शादी हुई, दूसरे थर्सडे को तलाक हुआ. और पिछले हफ्ते में था घर पे, तो कुछ केसेस आ गए, 7 महीने की उनकी एवरेज हमने निकाली, 7 महीने की शादी. क्यों, किस बात पे, क्या चीज़ है, क्या मिलाक मियार क्या है, खूबसूरती, माल, पैसा, मकाम, ये तो फानी है, आज नहीं कल तो. फिर इसी वही फिलॉसफी ऑफ मैरिज, क्यों अल्लाह ताला कहता है कि आपको असल आपका ईमान कामिल नहीं हो सकता जब तक आप
1: 70 टाइम्स आपकी इबादतें बढ़ जाएंगी.
0: इसको उस तरीके से बयान करो कि एक सिस्टम लगे, तो उसे लगे कि नहीं. और बताओ उसे अहादीस की रोशनी में कि अगर आप 23-24 एज में शादी करोगे, इसमें क्या है, शहवत उरूज पे है. यही वो मौका है जब शैतान तुम्हें अपनी तरफ बुलाता है, दूसरों का चेहरा दिखा के, चाहे औरत हो चाहे मर्द हो. अब अगर तुम्हें यही अपने घर में मिले,
1: सही, जैसे आपकी बात को ही खाली मैं तायीद करते हुए कि डॉक्टर्स कहते हैं कि ह्यूमन बॉडी जो है वो अपने पीक पे बिटवीन 18 और 30 होती है, और 30 के बाद, आप तो साइंस के स्टूडेंट हैं मुझसे ज़्यादा बेहतर, 30 के बाद जो है वो डिक्लाइन होना शुरू होती है. जब आप शादी 30 पे कर रहे हो, जब आपकी बॉडी का जो औज था, जो आपकी बॉडी की आपकी स्ट्रेंथ थी, कुव्वत और कुदरत थी, आपकी वो ज़ाफ पे, तब आप शादी कर रहे हो.
0: आप किस लिए,
1: हाँ, तो ये अच्छा, ये आप क्यों अपनी ज़िंदगी को सेक्रीफाइस कर रहे हो भाई. जब अल्लाह ने कुव्वत और कुदरत दिया है आपको, अल्लाह चाहता है कि जल्दी इज़्दवाज करो, तो क्यों, यानी क्यों कि अच्छा, यहाँ पर एक वालिदैन का भी रोल है. बहुत सारे अगर हमारे मैसेजेस आते हैं कि बच्चे करना चाहते हैं, वालिदैन कहते हैं
0: रुकावट, बिल्कुल,
1: कि वालिदैन बच्चे दीनदार, बच्चा दीनदार है, कह रहा नहीं मैं अहले बैत के हिसाब से करना चाहता हूँ, जहेज़ नहीं करना लेना चाहता हूँ, मसलन मैं शादी करना चाहता हूँ, वाजवान नहीं करना चाहता हूँ. बच्चा चाहता है मैं शादी आसान करूँ, वालिदैन नहीं चाहते हैं. यहाँ पर वालिदैन को क्या पैगाम देना है.
0: देखें, एक तो ये है कि मैं अपने बच्चे की शादी अपने लिए करूँ. ये एक हमारे एक स्कॉलर हैं, अभी अल्लाह ताला उनको उम्र तोलानी दे, ईरान में है, वो 10-15 साल रहे हैं कश्मीर में. उन्होंने एक पंफलेट लिखा था, उन्होंने कहा था कश्मीर में, उन्होंने कश्मीर का हवाला दिया था. अब मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में भी ऐसा
1: सब जगह,
0: यहाँ पर शादी लड़के और लड़की नहीं करते, यहाँ पर शादी लड़के और लड़की के घर वाले करते हैं. फकत बेड पे सोते लड़की लड़की हैं. तो क्यों, क्योंकि सारा जो मामला है वो तय करते हैं. जब उनको समझ में आए, जब उनकी वो मर्जी हो, तब शादी होती. वो बेचारे तो कठपुतलियाँ हैं, जैसे आपने कहा ना. देखिए, एक एक दफ़ा मैं बहसियत बाप उस वक्त अपने बेटी या बेटी की शादी करता हूँ जब मुझे ज़रूरत लगे. नहीं जी, अब बेटी बड़ी हो गई है तो अब बोझ भी बन गई है, अब क्या सोसाइटी वाले क्या कहेंगे, ठीक है जी ढूंढो इसके लिए लड़का. अब लड़का लगता है मुझे अब बड़ा हो गया है, अब कोई हो जो मेरी बीवी की खिदमत करे, मेरी खिदमत करे, जैसे ना वो कोई ले आओ किसी को. तो उस तनाजुर से, ये असल इस्लामिक कॉन्सेप्ट ये नहीं है. ज़रूरत उन बच्चों की है जिन्हें शादी करनी है, और जैसे आपने अभी साइंटिफिकली कहा, वो जो शहवत वही है. और मुझे, या मैं ये हर जगह मिसाल देता हूँ, शायद मिसाल सही भी हो या ये बात सही हो या ना हो, जब कोई मुझसे मिलने आता कहता है क्या अगर मुझे शादी करनी, मैं कहता हूँ क्या है एज, वो कहता है जी मैं 30 से, मैं 30 साल तो गुजर गए, अब 20 साल और गुजर जाएंगे, मरना तो मरना, 20 साल और गुजर गए. नहीं आगा, वो शब्द अब फ़ायदा नहीं है. एन्जॉय जिसे हम कहते हैं, एक लफ्ज़ जो है, मियाँ बीवी वैसे करे जैसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो.

0: लड़की है, यतीम बच्ची है, उसको भी इसी में एक सहम थोड़ा सा दे दे, उसकी भी शादी हो। अगर आप कन्विंस, इसने दो यतीम बच्चों की शादी खुद करवाई, तो ये मुस्तहक दाद है या मुस्तहक मसलन इस्तेजाया कहेंगे, नहीं जी आपने इतनी बड़ी शादी की। और वो गरीब बंदा जिसको पता है कि मैं दो खाने के अलावा कुछ नहीं कर सकता, कभी भी नहीं, उसको क्यों उतना उछलना है कि फिर हमें उसकी जो मैं कहूँगा गैर माकूल हरकत को मशरूयत देने के लिए कहना कि देखो जी बेचारे गरीब मारा गया।
1: हाँ, यहीं पर जो काउंटर आर्ग्यूमेंट्स पेश की जाती हैं वो ये है कि जैसे ही पैसे वाले लोग इस किस्म की शादियां करते हैं तो वो समाज में आहिस्ते आहिस्ते वो मॉडल, वो रोल मॉडल बन जाता है, और फिर वो दूसरे चाहते हैं कि उसको, तो ऐसे समाज में देखिए हम लोग हलाल और हराम तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि हम इस शरीयत ने इजाज़त दिया है उनको कि भाई अगर वो करना चाहते हैं अपनी इस्तेआत के हिसाब से करें, लेकिन क्या इस्तेहबाब इसमें, क्या बेटर ये है कि आप अगर शादी ऐसी करें कि आपकी शादी इतनी हो कि जिसे कोई ये ना कहे कि बहुत ही गरीबों की तरह मसलन आपने शादी की, लेकिन आपकी शादी
0: आपने नॉर्मल की, आपने
1: नॉर्मल की कि मिडिल क्लास फैमिली जो है उसको अफोर्ड कर सकती है, तो आपने एक कार्य खैर किया, क्यों? क्योंकि आप सोसाइटी में एक पॉजिटिव रोल मॉडलिंग को सेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि ये
0: मैं ये मानने बिल्कुल मानता हूँ, लेकिन आपको उसको कन्विंस करना है
1: जी,
0: आपको उसके साथ ऐसे बात करनी है कि ये जो उसका कम खर्चा है ये उसको बहुत बढ़ा के पेश करना है कि आपने अगर 50 लाख कम किए, 5 लाख कम किए, तो आपने पता नहीं क्या क्या किया वो जी, जी। अगर हम बजाय इसके उसकी इस पॉजिटिवनेस को उजागर करके उसे तश्वीक करें, उसको लिथाड़े, नहीं जी आपको ये करने, वो नहीं करेगा क्योंकि वो कह रहे मेरे पास पैसे हैं, मैंने कमाए हैं, आप कौन होते हो मुझे ये करने के। दूसरी चीज, हमारे शरीयत का हुक्म है अपनी इस्तेआत के हिसाब से, ठीक है, इसमें दोनों को तौबी करने की जरूरत है। एक गरीब को जो अपनी इस्तेआत के बाहर जाता है, तुम क्यों गए बाहर, एक अमीर को कहना कि अगर आप कम शादी करते, क्योंकि आप ट्रेंड सेटर हैं, आप ट्रेंड सेट करते हैं, तो जो आप ले आते हैं वही फिर उस गरीब को भी लाना चाहिए, तो उस तनाजुर में हम उससे बात कर सकते हैं,
1: तो सोसाइटी में बैलेंस क्रिएट,
0: बिल्कुल एक पॉजिटिव लाइन लेके, ये ना कि मसलन मैं गरीब की शादी में जाऊं और वहां किसी एक हफ्ते पहले किसी अमीर ने अपने बेटे की शादी की, उसने पैसा खर्चा हो और उस मजलिस में उसको लिथाड़ू, यानी जी उसने क्यों किया। पर्सनली मैं कहूँगा कि ये रविश शायद ठीक ना हो। हाँ, मैं उसके पास जाऊँ, उसे कहूँ कि आपकी शादी है, बहुत है, आप ये कर सकते हैं, इधर दो यतीम बच्चे हैं, उनकी भी अगर आप मदद करें शादी करने में, तो आहिस्ता आहिस्ता ये हो सकता है, ये
1: यानी वो पॉजिटिविटी की तरफ लेके आ रहा
0: है। दूसरी चीज है जो हमारी सोसाइटी में देखनी भी, शायद अगर मैं गलत हूं तो मुझे आप यहीं पे ठीक कीजिएगा, जो भी मैं नहीं कहूंगा सारे, लेकिन एक अच्छी खासी तादाद जो है जिनके पास पैसा है, मकाम है और बिजनेसमैन है, वो उनके यहाँ दीन कम रंग होता है, मैं नहीं कहूंगा नहीं होता, कम रंग होता है नस्बत भी उसके जो।
1: एक हमारे दोस्त हैं मौलाना अस्करी साहब, वो कहते हैं कि तीन चीज़ एक साथ बहुत मुश्किल से जमा होती है, कहते हैं वो दीन, दिल और दौलत।
0: ये तीन
1: दाल जो हैं
0: सही,
1: वो कह रहे हैं कि किसी के पास दीन होता है तो दौलत नहीं होती है, दौलत होता है तो दीन नहीं होती है, दीन और दौलत होता है तो दिल नहीं होता है देने के लिए। तो ये कह रहे तीन चीज जब किसी के अंदर जमा हो जाए ना, कि दीन भी हो, दौलत भी हो, दिल भी हो, वो समाज के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है।
0: वही अब उसको वो दर्द आपको उसमें वो इजाद करें, बजाय कि हम उसकी तौबीक करें, उसकी तशवीक करें, उसके छोटे छोटे चीजों को बढ़ा चढ़ा के पेश करें, मेरे ख्याल से वो, क्योंकि
1: हमारा काम है अट्रैक्ट करना, ना कि रिपल करना।
0: और वो जो नीचे वाला अपना सब कुछ बेच के उसको थोड़ा रोकना, नहीं जी आप अगर 10 किस्म के पकवान भी पकाओगे, लोगों को पता है आपकी हैसियत क्या, उससे आपकी हैसियत नहीं बढ़ेगी, उल्टा आपको ही गालियां पड़ेंगी कि आपकी इतनी हैसियत नहीं थी, क्यों किया। आप अपनी हैसियत से करें
1: जी,
0: यानी जो एक अच्छा खासा,
1: लेकिन ये भी हम लोगों को मिंबर से हर जगह जाके ये करना है कि हम लोग, ये आपकी मेयार इज्जत नहीं है, यानी इज्जत अल्लाह देता है, वो इज्जत अलग इज्जत है, इस ये चीज आपको कभी भी इज्जत नहीं देगी।
0: 10 लाख का शामियाना लगाया, इससे आपकी इज्जत ना बढ़ेगी, अगर आपने 20,000 का शामियाना लगाया, इससे आपकी इज्जत घटेगी नहीं, कुछ भी नहीं।
1: तो हाँ, तो ये हम लोगों के लिए, शादी की बात आ गई थी बीच में तो हम लोगों ने ये कर लिया, क्योंकि एक टॉपिक है जवानों के लिए बहुत ही कंसर्निंग टॉपिक है और मेरा दिल भी दुखता है जब मैं जवानों को देखता हूँ कि जवान हैं, दीनदार हैं।

0: थे तो एक गुलाम को देखा जी. वो रोटी खा रहा था, उसके सामने कुत्ता बैठा था, वो देख रहा था, फिर कुत्ते को रोटी दी. फिर इमाम हुसैन ने पूछा अलैहिस्सलाम ने कि तुमने पूरी रोटी इसको क्यों दी? कहा कि मैं भूखा हूँ, मुझे बड़ी भूख लगी थी, मैं बैठा था, लेकिन ये जब जानवर मेरे सामने बैठा तो इसकी आंखों में मैंने देखा ये मुझसे ज़्यादा भूखा है. तो मैं कहा मैं तो इंसान हूँ, ये तो जानवर है, मैंने पूरी रोटी इसको दे दी ताकि इसकी भूख जो है मिट जाए. इमाम ने इसको गले लगा, कहा ये है वो जो हम चाहते हैं और ये इंसान मुसलमान है जो पूरे आलम का दर्द जो है ना अपने सीने में रखे. और जहाँ कहीं भी कोई मुस्तहक मोहताज किसी इल्मी लिहाज से, फिक्री लिहाज से, टेक्नोलॉजी लिहाज से, किसी भी लिहाज से मिले, इसके पास ये से सदर हो इसको उठाए,
1: चाहे किसी भी मजहब,
0: चाहे किसी भी इंसान, ये खलीफा है. इसको ये नहीं देखना ये हिंदू है, ये कि असल कोई बाउंड्रीज ही नहीं है. ये खलीफतुल्लाह है. अल्लाह ने कुत्ते को भी अपना रिज़्क जो है दिया, नहीं कहा कि ये नजस है लेकिन इसको मैं रिज़्क नहीं दूंगा. ये खलीफा है खुदा का. जब खुदा नहीं देखता तो ये क्यों देखेगा? हाँ ये तब मुमकिन है जब इसके पास कुछ हो. वो कहते हैं ना, जिसके पास कुछ नहीं हो वो क्या दे सकता है? तो इसको इसमें बहुत मेहनत करनी. और आज के वर्ल्ड में जितने भी डायमेंशन, जितने भी ज़िंदगी के गोशे हैं, उसमें मुसलमानों को इल्मी लिहाज से, फ़िक्री लिहाज से, हर लिहाज से आगे आना है. और दुनिया को अगर संवारना है, जैसे हमारा वो ज़ुहूर का कॉन्सेप्ट है, उसको वही करना. अगर वो कर सके तो उसकी ज़िंदगी कामयाब है, हमारी इबादत भी उसी में कबूल होगी. वरना मैं अपने लिए करूँ, मैं अपने कब्र के लिए करूँ, ये एक आम इंसान का, ये फॉलोवर ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं हो सकता.
1: एक आखिरी पैगाम जो है, जो नॉन कश्मीरीज देख रहे हैं या तो कश्मीर को, कश्मीर के हालात को, अगर आप कोई पैगाम देना चाहते हैं उनको कि वो किसी तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं कश्मीरियों को, मिसाल के तौर पर अगर कोई भी आप पैगाम देना चाहते हैं कि जो नॉन कश्मीरीज हैं वो कश्मीरियों के लिए क्या कर सकते हैं?
0: देखें आगा, हम अभी उस स्टेट पे हैं, उन हालात में हैं कि हम जो भी बात करें वो पॉलिटिकल एस्पेक्ट से ली जाती है. तो कश्मीरी एक वो कौम है, बहुत इंटेलिजेंट,
1: अल्हम्दुलिल्लाह,
0: मैं कहता हूँ जीनियस,
1: अल्हम्दुलिल्लाह,
0: और वो कुदरती वसाइल उनके पास हैं. कश्मीरी कौम, बहसित कौम, जिस मज़हब के साथ रही, हिंदुज़म हो, बुद्धिज़म हो, प्योरेस्ट फॉर्म थी, प्योरेस्ट फॉर्म, और बहुत ही एतिकादी, जज्बाती, एहसासाती, और ऐसी कौम जो हर एक कौम, किसी भी कौम पे जब जुल्म हुआ तो वो मैदान में थी, हर एक का दर्द उनने अपने इसमें लिया है. और हालात ऐसे बने या हालात ऐसे बनाए गए कि अब कश्मीर को, कश्मीरी को लग रहा है मैं हर जगह अकेला हूँ, पराया हूँ. तो दुआ करें
1: इंशाल्लाह
0: दूसरों की तरह
1: कश्मीर घूमने आने नहीं कहेंगे आप?
0: मैं सबको दावत देता हूँ. मुझे ईरान में कहा जाता तो मुतअस्सिब कश्मीरी हो, क्योंकि मैं जब वहाँ घूमने जाते थे तो मैं कहता था कि नहीं ये क्या कश्मीर का क्या हो, कहते थे तुम मुतअस्सिब हो. कश्मीर जिसने नहीं देखा मेरे ख्याल से उसने ज़िंदगी का एक बहुत चीज़ मिस किया है. कश्मीर अल्लाह ताला की कुदरत को उरियान करके दिखाता है, यानी हर एक ज़हनियत का बंदा जो आए वो अपना हिस्सा वहाँ से ले जाता है. यानी आप इलाही बन हो, आप इरफानी हो, आप किसी जगह भी सजदे पे बैठ सकते हो. कभी ऐसी, और वो चीज़ें जो अभी डिस्कवर नहीं हुई है, जो बहुत कम लोगों को पता है या जो आम लोगों के लिए नहीं खोली गई, आम लोग नहीं जाते. कश्मीर अजाइबात है, वहाँ पे अजीब सारी चीज़ें और खूबसूरती की इंतहा है.
1: सुभान,
0: जिसे हम कहते हैं नेकड नेचर, वो अल्लाह बस लिखता है यहाँ पे. अब सुन रहा हूँ तो मैं सबको यही दावत दूंगा कि आए कश्मीर देखें. कश्मीर घूमने की जगह है, कश्मीर इबादत करने की जगह है, कश्मीर की फ़ज़ा रूहानी है. चाहे हिंदुज़म आप देखें, चाहे बुद्धिज़्म देखें, चाहे इस्लाम देखें, तसव्वुफ़ देखें, कश्मीर में आपको हर रंग मिलेगा. कश्मीरियों की मेहमान नवाजी बहुत ही आला दर्जे की. हाँ, हमारी मेहमान नवाजी को एनसाइक्लोपीडिया में नहीं लिखा गया हमें दुनिया में ऐसा, वरना कश्मीरी दिल से. और
1: एक बार मैं गया था, खा के थक गया था.
0: हाँ, ये जो वाजवान का आप जिसे हम नेगेटिवली करते हैं ना, मैं इसको इस पॉजिटिव, क्योंकि एक ट्रेडिशन है, जैसे हम हजरत